0: ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਗ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਇਹ ਹੈ ਰੇਡੀਓ ਸਰਸੰਗਮ।
1: दोस्तों एक बार फिर से स्वागत हमारे प्रोग्राम आपकी आवाज में। आप सुन रहे हैं रेडियो सरसंगम ओनली ऑन 94.7 एफएम पर। मैं हूं आपका होस्ट आपका दोस्त अमृत बरार। एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस प्रोग्राम में। कुछ मैसेजेस, अगर आपको ट्रक्स की इंश्योरेंस चाहिए तो आप जरूर कॉन्टेक्ट करें सोनिक इंश्योरेंस मानस पूजा जी को। उनका फोन नंबर 5878321208। बहुत ही अमेजिंग डील्स आपको मिल सकती हैं। वाईवाईसी होम केयर्स, इफ यू हैव एल्डरली फैमिली मेंबर्स एट होम हु नीड केयर एंड असिस्टेंस, प्लीज कॉल वीरपाल प्रधाप जी। फोन नंबर 8257600983। ओएसएस मेडिकल स्माइल मेडिकल जो कि संग्रिज में खुल चुका है, और अगर आपको डॉक्टर की तलाश है या आप मेडिकल सर्विसेज चाहते हैं तो आप उनको कॉन्टेक्ट कर सकते हैं 5876174696 पर। मर्सिडीज बेंज, कहा जाता है कि अगेन कनाडा की सबसे बड़ी डीलरशिप मर्सिडीज कार्स की हमारे नॉर्थ ईस्ट कैलगरी में है। तो अगर आपको अपनी सपनों की गाड़ी खरीदनी है मर्सिडीज, तो आप कॉन्टेक्ट करें गौरव शर्मा जी को 4039036757। पंजाब इंश्योरेंस, हरपिंदर सिद्धू जी एंड लवप्रीत कौर सिद्धू जी पंजाब इंश्योरेंस में आपके लिए बहुत बढ़िया डील्स लेके आते हैं। किसी तरह की इंश्योरेंस आपको चाहिए तो आप जरूर उनसे कॉन्टेक्ट करें 4034043500। मदर इंडिया रेस्टोरेंट, बहुत ही अमेजिंग नॉर्थ इंडियन और साउथ इंडियन कुजून के लिए आप वहां जा सकते हैं। 24 घंटे सातों दिन ये रेस्टोरेंट आपके लिए खुला रहता है। वेजिटेबल और बहुत ही अमेजिंग जो नॉन वेज डिशेज हैं वो आपको मिलेगी। प्योर देसी की वहां पर यूज होता है। फोन नंबर 4039367777। पिक्सल फोटो स्टूडियो सवाना बाजार में खुल चुका है। अगर आपको फैमिली फोटोज बेबी फोटोज पोर्ट्रेट्स बनवाने हैं तो 4039470060 पर आप कॉन्टेक्ट करें। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमने बात करी एक बहुत ही अमेजिंग प्रोग्राम जो कि होने जा रहा है हमारे कैलगरी में ICMF, उसके बारे में। लेकिन उसके अलावा हमारे सितंबर में बहुत बड़े बड़े उत्सव मनाए जाते हैं, और सबसे बड़ा उत्सव है गणेश चतुर्थी का। और पूरी दुनिया में जहां पे भी हमारे हिंदुस्तानी भाई बहन बसते हैं ये उत्सव जरूर मनाते हैं। अगेन मैं उसमें नहीं जाऊंगा कि कौन से उत्सव साउथ इंडिया के हैं, कौन से उत्सव नॉर्थ इंडिया के हैं, या कौन से पंजाब के हैं, कौन से मुंबई के हैं। गणेश जी का उत्सव पूरी दुनिया में, पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। वो कोई भी कोना हो, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, आपको गणेश चतुर्थी का प्रोग्राम हर कोने में देखने को मिलेगा। जैसे ही हमारी कृष्ण लीला है वो हर कोने में भारत देश में देखने को मिलती है, वैसे गणेश चतुर्थी का प्रोग्राम हर कोने में भारत देश में मनाया जाता है। कैलगरी के अंदर बहुत बारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इस प्रोग्राम को हमारे लिए लेके आती हैं। ऐसे ही एक हमारी संस्था जो कि है हिंदी फिल्म कैलगरी, आपके लिए लेके आ रही है गणेश चतुर्थी कल्चरल सिम्फनी ऑफ इंडिया, और साथ में भंडारा होने जा रहा है। डेट है September 19, 5 बजे शाम को, जो कि होने जा रहा है जेनेसिस सेंटर फीचर जिम में। उसकी इन्फॉर्मेशन देने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं शिखा जी, अनुराधा जी और दवेश जेटली जी। आइए उनसे जानते हैं कि क्या इन्फॉर्मेशन है। आप सबका बहुत बहुत स्वागत हमारे प्रोग्राम में।
2: थैंक यू सो मच।
3: नमस्कार जी।
1: सो दवेश जी पहली बार हमारे प्रोग्राम में आए हैं, लेकिन अनुराधा जी और शिखा जी हमारे साथ पहले जुड़ चुकी हैं, तो बहुत मजा आता है इनसे बात करने में, और काफी अच्छी इन्फॉर्मेशन सुनने को मिलती है, तो उनको हम बाद में छेड़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं दिवेश जी, जो पहली बार हमारे इस प्रोग्राम में आए हैं। तो दिवेश जी एक बार फिर से हार्दिक स्वागत।
3: शुक्रिया जी।
1: ये बताएं कि आप इंडिया से कहां से हैं।
3: जी मैं दिल्ली से हूं, जिसको इंडिया का हार्ट भी कहा जाता है।
1: मैं खुद दिल्ली से हूं, रोहिणी से।
3: अरे क्या बात है।
1: तो आप किस इलाके से हैं।
3: मैं विकासपुरी से।
1: विकास पास नहीं है।

0: जी बिल्कुल।
1: लेकिन जो दिल्ली की लाइफ है वो मुंबई और बाकी मेट्रोपॉलिटन से बहुत डिफरेंट है। हम लोग को चौड़े में बहुत रहते हैं चाहे कुछ हो या ना हो, लेकिन हम लोग बहुत ज्यादा चौड़े में रहते हैं। दिल्ली वासियों की बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है, लेकिन हमारा दिल्ली कहते हैं दिल्ली दिलवालों
0: जी बिल्कुल,
1: तो हमारा हार्ट बहुत बड़ा है। तो दिवेश जी, क्या इन्फॉर्मेशन है इस प्रोग्राम को लेकर?
0: जी, जैसे आपने श्रोताओं को बताया, 19 सितंबर को हम गणेश चतुर्थी सेलिब्रेट करने जा रहे हैं
1: जी।
0: आपने बिल्कुल सही कहा, प्रथम पूजनीय गणेश जी हमारे, हमारा कोई भी फंक्शन गणेश जी की पूजा के बगैर शुरू नहीं होता है। तो बिल्कुल पूरे इंडिया में हर स्टेट में इनको मनाया जाता है। हालांकि मराठियों ने थोड़ा अपना टैगलाइन ज्यादा फेमस कर रखा है, गणपति बप्पा मोरया। तो गणपति बप्पा तो सबके हैं और हम चाहते हैं कि सब आएं, मिलजुल कर हम बप्पा का ये दिन सेलिब्रेट करें और एंजॉय करें। और काफी सारी चीजें हैं हमारे श्रोताओं के लिए, तो हम चाहेंगे कि जितना हो सके उतना सबको बताएं, अपने साथ लेकर आएं, भंडारे का बहुत बहुत आनंद लें, और आपके लिए बहुत सारे परफॉर्मेंसेस भी हम लेकर रखे हैं हमने। तो इट्स गोइंग टू बी अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल नाइट।
1: क्या बात है। तो दोस्तों, अभी दिवेश जी ने बताया कि प्रोग्राम किस तरह से आयोजित किया गया है आपके लिए, लेकिन वहां से थोड़ा सा हम लोग बैकवर्ड जाते हैं और बात करते हैं शिखा जी से। शिखा जी, अगेन मैं वही आता हूँ कि गणपति जी का जो प्रोग्राम है, चाहे वो या नाम उनका, हम कोई भी शुभ कार्य हो या कोई भी हम अपना बिजनेस, घर या कुछ भी शुभारंभ करने जा रहे हो, तो उनके नाम से शुरू करा जाता है। और कहीं भी हमारे इंडियन भाई बहन बसते हैं, वो इस उत्सव को जरूर मनाते हैं, चाहे वो छोटे शहर में हो चाहे बड़े शहर में हो। आप की जो ये मेहनत है, जो आप लोग इतने प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करते हैं, इंडियन कैलगरी जो ऑर्गेनाइजेशन है, तो अब इस प्रोग्राम को लेकर थोड़ा सा ये बताएं कि कुछ अलग होने वाला है, कुछ डिफरेंट होने वाला है पिछले साल से इस प्रोग्राम में।
2: ऐसा है कि मैं भी पंजाब तो हाँ, प्रथम गुरु वंदना फिर मनावा गणेश
1: जी,
2: तो ये तो हर जगह गाया ही यहाँ से जाता है। तो गणेश जी को मनाया जाता है, विघ्नहर्ता है ना
1: जी।
2: तो कार्यक्रम तो सब यहाँ कर रहे हैं, हम भी वैसे ही कर रहे हैं जैसे सब कर रहे हैं, सब अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। पर जैसे हाँ, महाप्रसाद हो गया, फ्री एंट्री हो गई, ताकि जो अगर आप लोग आ रहे हैं तो आपको प्रसाद भी वही है। जैसे शाम को 5 बजे आप आए हैं जेनेसिस सेंटर और आप हमारे साथ पहले गणेश जी को अंदर लेकर आए हॉल में, खूब ढोल नगाड़ों के साथ उनका स्वागत किया जाए
1: जी।
2: और सब उस रंगारंग कार्यक्रम का जब हिस्सा बनते हैं तो इंडिया की याद आ जाती है
1: जी।
2: उसके बाद फिर पूजा होगी, पंडित जी पूजा करेंगे, आप सब लोग आगे खड़े होकर उनके साथ पूजा करें, लड्डू का प्रसाद बांटा जाएगा, परफॉर्मेंसेस कुछ होंगी जिसमें हम हर उम्र के लोगों को स्टेज देने की कोशिश कर रहे हैं। इस बार हम चुन रहे हैं कि कुछ नए चेहरे लाए जाएं।
1: अच्छा।
2: हर बार किसी नए को मौका दिया जाए, या कोई लोग जो सिर्फ 2 या 3 बार हमारे साथ जुड़े हैं उनको स्टेज दिया जाए। कुछ लोग फिर निपुण हो जाते हैं, फिर नए लोगों की बारी
1: जी।
2: और उसके बाद एंड में जो महाप्रसाद है
1: जी,
2: वो लाइक मैं बोलूंगी प्रसाद है, लंगर है
1: जी,
2: है ना
1: जी।
2: तो फ्री एंट्री और लंगर, आप डिनर वहां हमारे साथ करके ही जाए। और अगर एक ओपन ये है इनविटेशन, आज भी अगर आप स्पॉन्सर, डोनेट या पार्टिसिपेट, वॉलंटियर करना चाहते हैं
1: जी,
2: तो प्लीज जो आज जो आप ये जो पोस्ट शेयर करेंगे आपके रेडियो के फेसबुक पेज के माध्यम से
1: जी,
2: वहां कमेंट करें, हम आपको कांटेक्ट करेंगे
1: जी।
2: हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ना चाहते हैं कि उनको फीलिंग आए कि वो इंडिया करते थे
1: जी।
2: यहां जो ये जेनेसिस में हो रहा है, ये आपके घर में ही हो रहा है, आप आके आगे हाथ बढ़ाएं और हमारे साथ जुड़े। वेलकम एवरीबॉडी।
1: बहुत बढ़िया बात की आपने राधा जी, शिखा जी,
3: क्योंकि मेन चीज है कि इट डजंट मैटर हम किस पार्ट ऑफ इंडिया से हैं।
2: हाँ।
1: हमारा मेन मकसद है इस प्रोग्राम को, इस उत्सव को इकट्ठे होकर मनाना, इस उत्सव को एंजॉय करना, इस उत्सव को एकता में प्रति दिखाना कि हम लोग एक हैं।
2: बिल्कुल। किसी भी त्योहार को यहाँ मनाने का मेन पर्पस ही यही है कि जैसे आज मैं घर में अकेले खुद गणेश जी बिठा लूं तो मेरी सहेलियां भी नहीं पहुंच पाए शायद
3: जी, जी।
2: तो हम सैटरडे को कर रहे हैं
3: जी।
2: तो जिनकी छुट्टी है सैटरडे की शाम हमारे साथ बिताएं, रंगारंग कार्यक्रम, पूजा में पार्टिसिपेट करें, आके प्रसाद बांटे हमारे साथ। और जो महाप्रसाद में तो हमें बहुत वॉलंटियर चाहिए। अगर ऑन द स्पॉट भी कोई आके कहता है कि मेरी इच्छा है, हम उसे कभी मना नहीं करते कि आप कर लो आज इस बार।

0: अच्छी बात है, जितने हाथ उतना बरकत।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात की। चलिए अब अनुराधा जी से थोड़ी सी गुपचुप हो जाए। तो अनुराधा जी, आप इस इंडियन ऑफ कैलगरी से कब से जुड़ी हुई हैं?
2: It's been 4-5 years।
1: जी yeah. जी, तो हर साल ये उत्सव मनाया जाता है
2: जी.
1: तो कैसा लगता है जब आप इस उत्सव में जाती हैं, घर की याद आती है, कैसा लगता है कि नहीं ये थोड़ा सा डिफरेंट है और यहाँ की डेमोग्राफी थोड़ी डिफरेंट है तो इसको डिफरेंट तरीके से मना रहे हैं कि बिल्कुल वही रिजेंबल करता है?
2: बिल्कुल इंडिया की याद आ जाती है।
1: अच्छा,
0: इतने साल हो गया है यहाँ आए हैं कि अब ये हमारे लिए ये इवेंट लेकर
2: इंडिया की बिल्कुल याद आ जाती है। वही ढोल नगाड़े बज रहे होते हैं, वही गणेश जी का स्वागत होता है, उसी तरीके से पूजा होती है। पंडित जी बहुत अच्छी पूजा करवाते हैं वहाँ पर। सो इट्स अ फुल इंडियन टाइप का एंजॉयमेंट, फुल इंडियन एनवायरनमेंट। अपने बच्चों को भी हम चाहते हैं कि लोग लेकर आए जिससे उनका भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो अपनी कल्चर से, अपने धर्म से, कुछ उनको भी देखने सुनने को मिले, कुछ समझने को मिले
1: जी।
2: तो इसी कारण से हम लोग ये सब करते हैं।
1: नहीं, बहुत जरूरी है। अगेन हमने पिछले बार बात की थी जब हम लोग आर्ट ऑफ लिविंग के बारे में बात कर रहे थे, तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम अपने बच्चों को अपने कल्चर के साथ जोड़े, अपनी सभ्यता के साथ जोड़े, अपने रिलीजन के साथ जोड़े। बिकॉज होता क्या है कि बच्चे यहाँ पर आकर एक डिफरेंट माहौल में पढ़ते हैं, उनकी गलती नहीं है। हम हमेशा बच्चों को कई बार यू नो कंट्रोल करने की या उनको कहते हैं कि नहीं तुम बिगड़ गए हो या आउट ऑफ वे जा रहे हो, तुम्हारा वे ऑफ लिविंग डिफरेंट है, इनमें उनकी गलती नहीं है क्योंकि यहाँ
2: एक्सपोजर ही वैसा
1: डिफरेंट है। जब हमने ये चुना कि हमने एक डिफरेंट देश में जाना है तो हमें ये चीज पीछे सोच के आने छोड़ के आने चाहिए थी कि बच्चे हमारे तरीके से पलेंगे बढ़ेंगे। आप हिंदुस्तान में या कोई भी और साउथ एशियन कंट्री में बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो वहां का जो आपका बच्चों पे असर होगा बहुत डिफरेंट होगा।
0: यहाँ पर यहाँ एडजस्ट होना,
1: उनको यहाँ एडजस्ट होना है, यहाँ के कल्चर के साथ एसिमिलेट होना है। हम उनपे अपना कल्चर नहीं थोप सकते कि नहीं आपको ये सब चीजें करनी ही चाहिए। अब जैसे हम लोग सुबह जब मैं अपनी बात कर रहा हूँ, कॉलेज स्कूल में जाते थे व्हेन वी स्टार्टेड, तो हम पहले मॉडल टाउन में रहते थे। मॉडल टाउन में दिनेश जी क्या था कि जहां पे हमारा घर था वहां पर मंदिर और गुरुद्वारा पास पास में था, तो सुबह सुबह हमें मंदिर की भी घंटियां सुनती थी और सुबह आरती होती थी और गुरुद्वारे का पाठ।
2: गुरुद्वारे का
1: अच्छा, अब लाउड स्पीकर वहां अलाउड है, कोई टेंशन नहीं है, तो आप सुबह उठते हैं तो आपको सुनने को मिलता है, यहाँ अलाउड
2: नहीं।
1: अच्छा जी, अब आप निकल रहे हैं तो मंदिर गुरुद्वारे मथा टेकते हुए जा रहे हैं। अच्छा, अब जब हम एक स्कूल में पढ़ते थे जिसका नाम गुरु हरकृष्ण पब्लिक स्कूल था, तो वहां पर प्रेयर में आपको पाठ अरदास होती
2: थी।
1: अगर आप किसी और स्कूल में जाते हैं तो वहां पर आपकी वंदना या कुछ और आपकी पूजा होती है, तो वहां का एक डिफरेंट वे था, राइट। अब यहां पर हम सोचे कि नहीं कि बच्चे अब उस तरीके से पले बढ़े, भाई बच्चों ने आपको मजबूर नहीं किया, आप अपनी मर्जी से यहाँ आए हैं, आप एक बेहतर लाइफ के लिए आए हैं, तो बच्चों को आप इसमें मत घसीटे, लेकिन बच्चों को आप जोड़े जरूर, कोशिश करें कि बच्चों को आप अपने कल्चर के साथ बांध के रखें अपने घर में। सॉरी, मुझे नहीं कहना चाहिए लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ, मैं कुछ ऐसे फैमिलीज को जानता हूँ जो अपने बच्चों, जिनके बच्चे हिंदी में नहीं बोल पाते,
2: राइट,
1: क्योंकि उनका मानना है कि नहीं जी हिंदी क्यों सिखाए,
0: वो थोड़ा सा
1: कुछ ज्यादा ही ओवर बोर्ड हो गया, निगलेक्ट है वो कि उनकी चॉइस थी कि बच्चे आप सीखे ही नहीं, या कोई ऐसे लोगों को जानते हो नहीं हम इंडिया क्यों जाए, वहां पर तो सांप होते हैं, वहां पर तो छिपकलियां होती हैं, अरे यार मच्छर होते हैं, अरे नहीं यार
0: अपनी जड़ों से जुड़े रहना।
1: लेकिन आपने अपने बच्चों को खुद अपनी चॉइस से दूर रखा, अब कल को एंड ऑफ द डेज में जब बच्चे आपसे दूर हो जाएंगे फिर आप कहेंगे बच्चे में पूछते
2: बच्चे हैं। जी।
1: तो हम कहीं ना कहीं अपनी गलती को छुपा देते हैं और बच्चों को हम लोग आड़े हाथ लेते हैं कि उनकी गलती है। तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत बड़ी यू नो उपलब्धि है हमारे इस कैलगरी शहर के लिए और उन सब शहरों के लिए जहां पर आप जैसी लोगों की संस्थाएं हैं और वो ऐसे उत्सव जो हैं वो लेके आ रहे हैं हमारे परिवारों के लिए, हमारे बच्चों के लिए।
2: तो
1: वी आर सो थैंकफुल टू यू जो कि इस तरह के इनिशिएटिव्स लेते हैं, बहुत हिम्मत और बहुत
0: मेहनत
1: मेहनत का काम है,
0: बहुत
1: मेहनत का काम है। आती है। इजी नहीं है ऐसे प्रोग्राम्स को पब्लिक के आपने लेके आना, क्योंकि हमें तो सिर्फ एज अ पर्सन हम लोग वहाँ चले जाते हैं और उसको एंजॉय करते हैं।
0: तीन तीन महीने का थॉट प्रोसेस है और प्लानिंग है और इतने सारे वॉलंटियर्स को साथ जोड़ना और जोड़ के रखना और

0: वॉलंटियर हमारे लिए सेवा करने आ रहा है, उसको खुश भी रखना है, वो दोबारा भी लौट के आए। और एक चीज, जैसे आप बच्चों की बात कर रहे हैं अमृत जी, ऐसे इवेंट्स में वो पेरेंट्स अपने बच्चों को जरूर लेकर आते हैं, ड्रेसअप करवा के लेकर आते हैं कि हमने उन्हें दिखाना है कि इंडिया में हम ऐसे मनाते थे। ये एक मौका है उन पेरेंट्स के लिए। आप देखें, यंग पेरेंट्स हमेशा अपने बच्चों को लेके आएंगे क्योंकि उनकी नींव बनाई जा रही है उस वक्त
1: जी,
0: और
1: जी।
0: इन इवेंट्स के माध्यम से जितनी बार भी गणेश चतुर्थी होगी यहाँ कैलगरी में, वो पेरेंट्स हमेशा अपने बच्चों को लाएंगे और बच्चे अगले साल पूछेंगे
1: जो उनकी आगे की जनरेशन होगी वो भी उसको एंजॉय
0: फॉलो
1: करेगा, वो भी उसको फॉलो करेगा।
0: एक इम्पोर्टेंट चीज उस दिन के लिए, आप जैसे अलग पूछ रहे थे, हम एम्पावर हर माया, हम स्कॉलरशिप रन कर रहे हैं फॉर गर्ल्स, उसमें अलग अलग क्राइटेरियाज हैं। इंडियंस इन कैलगरी के फेसबुक पेज पर सारी इन्फॉर्मेशन वहां पर उपलब्ध है। अलग अलग कैटेगरीज में, इफ योर डॉटर और योर इवन योर वाइफ, they are achievers, like special achievers, they have done something extraordinary and or you feel she is an achiever, तो हमें उनका नाम और सब डिटेल्स भेजें। एक फॉर्म है और वहाँ फेसबुक पेज पर सब अवेलेबल है, आप टेक्स्ट कर दें तो भी आपको हम भेज देंगे, और उससे let's have more participant in empower her Maya scholarship every day, every year। तो उसमें मनी है इन्वॉल्व जो स्कॉलरशिप का दिया जाता है। पिछली बार भी हमने 3 दी थी, इस बार भी हम इसी स्टेज के माध्यम से अनाउंस करेंगे।
1: क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो एक तो बप्पा की पूरा हो रही है, साथ में हम लोग हेल्प कर रहे हैं जिसको जरूरत है, तो एक बहुत बड़ी बात है।
0: एक वहां पर लाइव गणेशा मेकिंग वर्कशॉप भी होगा।
1: अच्छा,
0: बच्चे आए अपना रजिस्टर, बिना रजिस्ट्रेशन के आ जाए, अब तो बहुत दिन कम रह गए हैं, बट अगर रजिस्टर कर लें तो भी अच्छा है। उससे हमें एक हेडकाउंट मिल जाता है कि महाप्रसाद और बढ़ाना है,
1: और
0: कितना चाहिए, है ना। जैसे अभी आज तक शायद 800 की रजिस्ट्रेशन सुबह मैंने देखी थी, तो अभी भी दिन है और लोग जब करीब आता है इवेंट तो लोग और जोश से पार्टिसिपेट करते हैं, तो ये 1000 से ऊपर जाने वाली हैं
1: जी।
0: तो वहाँ गणेशा मेकिंग वर्कशॉप लाइव होगी, मैम होंगे वो सिखाएंगे बच्चों को, और क्ले वगैरह भी प्रोवाइड किया जाएगा
1: जी।
0: और आप वहां पर आए और पार्टिसिपेट करें, बच्चों को गणपति बनाने सिखाए जाएंगे आधे घंटे के अंदर।
1: आधे घंटे क्या बात है, क्या बात है। अच्छा दिवेश जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, एक बहुत बड़ा सवाल होता है कि अभी हम इंडिया में होते हैं किसी भी कोने में, तो वहां पर जो गणपति जी हैं उनको हम विसर्जन के लिए लेके जाते हैं, यहाँ पे ऐसी कोई भी हमारे पास वो नहीं है जगह जहाँ पर हम कर सकें। और दूसरा, एनवायरमेंटल फ्रेंडली एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट यहाँ पर सबसे ज्यादा पूछा जाता है, इंडिया में भी काफी लोग पूछने लग गए हैं, क्योंकि मुंबई में जहाँ पर विसर्जन किया जाता है बहुत बुरा होता है वहाँ, तो लोग इस चीज के ऊपर थोड़ा सा कमेंट करने या बोलने लग गए हैं कि उसको हम क्या करना चाहिए।
0: बहुत करंट टॉपिक चल रहा है
1: जी,
0: गार्बेज और
1: डिस्पोजल ऑफ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल,
0: बहुत ध्यान रखना।
1: तो रमेश जी, आपकी संस्था जो है वो इस बारे में क्या कर रही है?
2: देखिये, हम इको फ्रेंडली सबसे पहले चलते हैं, हालांकि हमारे जो रूट्स हैं अगर आप पीछे चलें, जब ये सभ्यता शुरू हुई थी तो सारी चीजें बायोडिग्रेडेबल ही यूज की जाती थी। उस जमाने में ये सिंथेटिक कलर्स और इन चीजों का इस्तेमाल नहीं होता था कि जो हमारे एनवायरनमेंट को खराब करे
1: जी।
2: बट ओवर पीरियड ऑफ टाइम जैसे चीजें टेक्नोलॉजी चेंज होती गई, नए नए मटेरियल्स हमारे पास आते रहे
1: जी।
2: हमने कुछ दुरुपयोग किया उन लोगों चीजों का बिना सोचे समझे, इंटेंशन शायद हमारी अच्छी थी
1: जी।
2: बट हमने शायद एनवायरनमेंट के बारे में सोचा नहीं, हमारी कुछ जनरेशन्स ने हमसे पहले
1: जी।
2: तो शायद हमारी आंखें खुली हैं, हम थोड़े अवेयर हो गए हैं, हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके चलते हैं कि सबसे पहले हम इको फ्रेंडली ऑप्शंस लेके चलें जहां पे हम एनवायरनमेंट को खराब ना करें
1: जी।
2: और दूसरा, जैसे हमारे पंडित जी हमें बताते हैं कि आप इसको विसर्जन एक पानी के बकेट में भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपको रिवर में जाके विसर्जन करना है। ये एक तरीके का सिंबॉलिज्म है, इट इज नॉट कि ये रिचुअल है कि आपको ऐसा ही करना पड़ेगा या ऐसे ही आपको फॉलो करना है। इट इज नॉट अ हार्ड एंड फास्ट रूल, इट इज ऑल सिंबॉलिज्म जो हमें कनेक्ट करता है हमारी स्पिरिचुअलिटी से, हमारे कल्चर से
1: जी।
2: तो हम बस उस को इम्बाइब करना चाहते हैं, लोगों को जोड़ना चाहते हैं, जो लोग यहाँ पर हैं, जो बप्पा को मानते हैं। एक वैसे इंटरेस्टिंग फैक्ट है, मैं सर्च कर रहा था तो मुझे मिला
1: जी।
2: कि 1893 में
1: जी।
2: लाल बाल गंगाधर तिलक जी ने ये स्टार्ट किया था मुहिम।

0: कि बप्पा जी हर लोग अपने घर पे सजाते थे
1: जी.
0: इट यूज टू बी अ प्राइवेट इवेंट. तो उन्होंने बोला कि इसको एक सार्वजनिक इवेंट में कन्वर्ट करना चाहिए. ही कॉल्ड हिम लाइक यूनिटी बियॉन्ड बॉर्डर्स, जिसको आज आप बिल्कुल देख रहे हैं कि इंटरनेशनली ये इवेंट हर जगह मनाया जा रहा है, हर कोई शामिल होना चाहता है, हर कोई इंजॉय कर रहा है
1: जी.
0: तो अब ये देखिए कब से चलता आ रहा है और अब किस रूप में पहुंच चुका है.
1: बिल्कुल सर, और मैं भगवान की कृपा है, ठाकुर वाले की कृपा है, जब भी मैं इंडिया में जाता हूँ तो किसी भी कोने में जाऊं मैं सिद्धिविनायक जरूर माथा टेक के आता हूँ और बुलाते हैं पापा और उनकी वजह से मैं चला जाता हूँ वहां पर. लालबाग आता हूँ वहां पर. लालबाग का राजा जो हमारा सबसे बड़ा और सबसे कहा जाता है कि सबसे एक्सपेंसिव जो बप्पा जी की मूर्ति है वहां पर बनाई जाती है. तो पूरी दुनिया में जहां पे भी हमारे लोग बसते हैं, हमारे इंडियंस, तो वो जरूर इस उत्सव को मनाते हैं. और इस उत्सव की जो सबसे बड़ी बात है कि डांस मस्ती सब कुछ होता है,
2: वो भी आखिर में रखा जाता है.
1: बिल्कुल, वो भी और सबसे बड़ी बात
2: विसर्जन के बाद.
1: बिल्कुल बिल्कुल,
2: विसर्जन के बाद
1: तो बिल्कुल सारे जो जैसे हमारे कृष्ण जी की जो लीला करी जाती है तो उसमें भी मस्ती होती है. तो हमारे जो कल्चर है वो सब यही है कि ऊपर वाले के जो अगर आपने गुणगान करना है तो ये नहीं है कि आपको समाधि में लीन हो जाना है. आप हर वे में हर तरीके से ऊपर वाले का नाम ले सकते हैं और हर रंग में ले सकते हैं.
2: संसारी लोग तो इसी में ध्यान लगा रहे हैं.
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. अब ये एक अलग टॉपिक है. बड़ा टॉपिक है. तो इंडियन जिन गैलरी आपके लिए सत्ता जो है वो लेके आ रही है गणेश चतुर्थी का बहुत ही बढ़िया अमेजिंग प्रोग्राम जो कि होने जा रहा है सैटरडे 19 सितंबर शाम को 5 बजे ऑनवर्ड्स. फीचर जिम जो जेनेसिस सेंटर में 7555 फैल्कन ब्रिज बुलेवार नॉर्थ ईस्ट, आप जरूर वहां जुड़ें और इस प्रोग्राम को और इस उत्सव को मनाएं अपने परिवार के साथ, अपने बुजुर्गों के साथ, अपने दोस्तों के साथ. और सबको खुला निमंत्रण है, कोई पर्टिकुलर समुदाय के लोग की बात नहीं है. आप ही एक मल्टीकल्चर कंट्री है तो सब लोग वहां पहुंचे, अपने दोस्त जो नहीं भी हमारे देश को बिलोंग करते हैं अगर वो भी इस हिस्सा बनना चाहते हैं उस उत्सव में, उनको भी लेके आए और देखें किस तरह से हम अपने जो उत्सव है उनको बनाते हैं. सो बिफोर वी एंड टुडेस प्रोग्राम, मैं 30 सेकंड अपने गेस्ट को देना चाहूंगा. प्लीज आप कुछ कहना चाहेंगे बिफोर वी एंड टुडेस प्रोग्राम.
2: I welcome everybody from all the spheres of Calgary. Every nationality and demographic is most welcome to come and join us in this utsav and have dinner with us that night. If somebody cannot understand my language, main Hindi Punjabi bolti hu, so please come and dinner, have a dinner with us.
1: Kya baat hai,
3: Radha ji. Bas yahi hai, sab kuch bola ja chuka hai. So we invite everybody yahan aaye aur hamare sath celebrate karein. और जुड़े हमारे साथ इंडियंस इन कैलगरी के साथ. और हमारे दो इवेंट्स और भी आ रहे हैं, उनके बारे में भी बताना चाहूंगी. एक गरबा आ रहा है वो अक्टूबर में होगा और दिवाली भी आ रही है 30th October को. सो उसके लिए भी आप स्टे ट्यून्ड.
1: और उसके बारे में हम लोग दोबारा
0: जी, मैं सभी इंडियंस और नॉन इंडियंस सभी का स्वागत करना चाहूंगा इस इवेंट पे. प्लीज आए, हमारे साथ शामिल हों और बहुत लुफ्त लें इस इवनिंग का. हम चाहते हैं यूनिटी सिर्फ इंडियंस ही नहीं, नॉन इंडियंस हो, सब हो, अपना कल्चर सब जगह हम पहुंचाना चाहते हैं, हम प्यार बांटना चाहते हैं. प्लीज आए.
2: निवेश हमारे एमसी हैं.
1: क्या बात है. दोस्तों आपने ये इन्फॉर्मेशन तो सुनी, एक और इन्फॉर्मेशन मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा. हेल्थ एक्सपो 2026 होने जा रहा है. एजुकेटिंग द कम्युनिटी ऑन ऑल मैटर्स ऑफ हेल्थ एंड हेल्थ केयर, संडे सितंबर 13 जेनेसिस सेंटर में अगेन. आप यहां पहुंचे, डॉक्टर गार्नेट और सुदरलैंड जो हैं वो बात करेंगे रॉबर्ट न्यूरोसर्जरी के ऊपर, रोबोटिक न्यूरोसर्जरी के ऊपर. बहुत ही अमेजिंग इवेंट होने जा रहा है ये, तो आप जरूर यहां पहुंच के इस प्रोग्राम को कामयाब बनाएं. सुबह 11:30 ये प्रोग्राम होगा. अगेन सितंबर 13 संडे का दिन है तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. कीनोट स्पीकर है डॉक्टर गार्नेट और सदरलैंड. जरूर आप इस प्रोग्राम में पहुंचे. और अगर आप थोड़ा सा भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं न्यूरोसर्जरी के ऊपर, इट्स एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी एंड रेयर अपॉर्चुनिटी फॉर स्टूडेंट्स, यूथ, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, रिसर्चर्स, इंजीनियर्स, एंटरप्रेनर्स और एनीबॉडी क्यूरियस अबाउट द फ्यूचर ऑफ मेडिसिन, तो जरूर वहां पहुंचे. अब सुविधा लेने का टाइम आ गया. आपसे मुलाकात होगी अगले सोमवार. तब तक अपना ध्यान रखें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और स्वस्थ रहें.